विभिन्न मोडल का डेक स्पीकर साउंड बक्स पाइन प्रोप्राइटर रेग बहादुर बस्ने संपर्क मोबाइल नंबर 9841 71 96 50।

0: जलजला टायर चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 1 बज्यो।
1: रेडियो थाहा संसार 99.4 मा अबको प्रस्तुति।

0: चुनु छिन्ने भेट चाउस
1: लागि के भने के पछि सुन अरूले भने के पछि
0: के छ छामला पोयाल भे लागि के छ त ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।